0: सुप्रभात गुरुआमा।
1: सुप्रभात, बस आज हामी के विषयमा छलफल गर्छौ?
0: वैदेशिक रोजगारीको विषयमा।
2: The purpose of music with your host Isaac Rai. Keep listening to Good News FM and God bless you.